0: 是否更新今年增长预测，他认为未来经济前景虽然有挑战，但依然积极正面。中九龙绕道隧道内有货车怀疑超速及横越双白线，警方拘捕两名男子涉嫌危险驾驶，警方稍后举行记者会交代案件。网上有片段显示，在中九龙绕道隧道管道内，两辆货车怀疑超速驾驶及违例横越双白线。运输署表示非常关注事件，隧道营办商经实时监察隧道交通发现事件后，已即时将涉嫌违法个案转交警方跟进调查。署方强调，超速驾驶属严重罪行，而横越双白线也违反相关道路交通规例。美国联邦航空管理局继续调查日前发生的客机滑行时撞到人的事故，事发在当地星期五晚11点多，边疆航空编号4345的客机从丹佛国际机场滑行准备起飞时，机师向控制塔通报称怀疑撞到一名横过跑道的人，需要紧急终止起飞。机上224名乘客和7名机组人员安全疏散，事件中12人轻伤。丹佛国际机场事发翌日表示，该名身份不明的人士翻越机场围栏，2分钟后企图横过跑道，被客机撞到，其后证实不治。机场方面又说，相信他并非机场员工。至于事发跑道已经重开，机场围栏也没有损坏。边疆航空表示，正在配合机场和当局的调查工作。出现汉坦病毒个案的邮轮红迪厄斯号在西班牙特内里费岛的水域停泊，开始疏散船上人员。西班牙政府官员表示，所有乘客没有出现感染症状，他们将乘坐接驳艇上岸，再前往机场登机返回各自的国家。世卫总干事谭德赛前往当地参与协调工作，他感谢西班牙政府同意接收这艘邮轮，说理解岛上居民可能会担心邮轮散播疫情，但他强调风险非常低。天气方面，一道云带正覆盖广东沿岸，同时高空反气旋影响南海北部，在晚上8点，热带低气压黑格比集结在马尼拉之东南偏东约1340公里，预料向西北偏西移动，时速约12公里，移向菲律宾以东海域。本港地区今晚及明天的天气预测，大致多云，明天短暂时间有阳光，气温介乎23至28度，吹轻微至和缓东至东南风。展望随后一两天部分时间有阳光，日间炎热，局部地区有骤雨，星期四及星期五天气不稳定，骤雨增多即有雷暴。现时路德室外气温24度，相对湿度81%。向脸台新闻报道完毕。
1: 听 AM 六二一，
2: 听生活，听精彩。
1: 听香港电台普通话台
2: AM 六二一，香港电台普通话台，谱出生活精彩。
3: 最近我们成为寄养家庭，妈妈说每个人都需要家庭温暖，所以我们把寄养弟弟视作家人。爸爸教我要懂得分享，一起分享原来是很开心的。过一段时间，寄养弟弟就会回自己的家去，真替他高兴啊！
4: 想申请成为寄养家庭，请浏览社会福利署网页或致电25732282。
5: 同学，你神神秘秘的在干什么呢？
6: 嘘，
5: 我在记录学校发生的有趣事情啊。
6: 这有什么用？
7: 这你就不懂了吧？谱出校园精彩，校园悄悄话
8: 上线啦！
9: 友谊这个东西它不是建立在外表，
10: 我现在跟他相处有出入的时候也可以做到彼此尊重。
6: 星期一下午四点，
7: 谱出校园精彩，校园悄悄话，
6: 记得收听哦。
11: 由而家到晚上十一点是社区参与广播时段，节目由参与 CIBS 社区参与广播服务的社区团体或人士制作。
12: 从现在到晚上十一点是社区参与广播时段，节目由参与 CIBS 社区参与广播服务的社区团体或人士制作。
13: From now to 11 p.m., you'll be listening to programs made by community producers from the CIBS Community Involvement Broadcasting Service.
14: हाम्रो समाजको हर छोरीहरुमा समर्पित हङकङमा रहेका अल्पसंख्यक समुदायका छोरीहरुको अनेकौं आभासहरु समेटिएको एउटा मीठो रेडियो कार्यक्रम हाम्रा छोरीहरु Our Daughters 2.0, जहाँ हामी समेट्ने छौं वहाँहरूको फरक फरक पृष्ठभूमिमा बाँच्नु भएका अनुभवहरू, जसले शिक्षा, स्वास्थ्य, पत्रकारिता, उद्यम, खेलकुददेखि आजको आधुनिक आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स सम्मको बृहत योगदान दिनुभएका प्रेरणादायी 13 कथाहरू सुन्नेछौ। रेडियो कार्यक्रम हाम्रा छोरीहरू Our Daughters 2.0, यस कार्यक्रमको उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्याइरहेका महिलाहरूको प्रेरणादायी कथा मार्फत समाजमा सकारात्मक सोच र समानताको सन्देश दिनु हो।
15: Dedicated to every daughter of our ethnically diverse community, a radio program celebrating the voices and journeys of daughters from Hong Kong's ethnically diverse community. Hamra Choriharu, Our Daughters 2.0. Hamra Choriharu, Our Daughters 2.0 aims to inspire positivity and promote equality in society by sharing the powerful stories of women who are shaping a better future for all.
14: श्रोता मित्रहरू नमस्कार। छोरीहरूको साहस, सपना र उपलब्धिहरूले समाजलाई समानता, सम्भावना र उज्यालोतर्फ डोराउँछ भन्ने विशेष अनुभूति सहित तयार भएको रेडियो कार्यक्रम Our Daughters 2.0 को छैटौं श्रृंखला स्वागत गर्दछु। म कार्यक्रम प्रस्तोता मिरिना राई। यस कार्यक्रमलाई कम्युनिटी इन्भल्भमेन्ट ब्रडकास्टिङ सर्भिस CIBS द्वारा उत्पादन गरिएको हो। यस कार्यक्रमले महिला नेतृत्वको उजागर गर्दै छोरीहरूको योगदान, सम्मान र भविष्यको सम्भावना बारे समाजमा जागरूकता फैलाउने उद्देश्य राखेको छ।
15: Dear listener, welcome to Hamra Choriharu, Our Daughters 2.0, where we celebrate the remarkable achievement of women from Hong Kong's ethnically diverse communities. These trailblazers have made meaningful contributions across fields like education, health, journalism, entrepreneurship, sports, and the fast-evolving world of artificial intelligence, AI. Through their real-life stories of struggle, resilience, and triumph, we uncover how they have shattered gender barriers and the stereotypes. This program inspires the next generations of girls to embrace confidence, courage, and vision. It champions equal opportunities, inclusion, and lasting positive change in our society. By amplifying these voices, we highlight the vital role of women's leadership and affirm the immense value, respect, and potential of every daughter in our community.
14: यस कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य हङकङमा रहेका अल्पसंख्यक समुदायका छोरी तथा महिलाहरूले विभिन्न क्षेत्रहरूमा पुर्याएको योगदानहरूलाई उजागर गर्नु हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, पत्रकारिता, उद्यमशीलता, खेलकुददेखि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्ससम्म सक्रिय महिलाहरूका वास्तविक र प्रेरणादायी कथा मार्फत उनीहरूको संघर्ष, क्षमता र उपलब्धिहरूलाई समाज सामु प्रस्तुत गर्दै लैङ्गिक भेदभाव र पूर्वधारहरूलाई चुनौती दिनु यस कार्यक्रमको मूल लक्ष्य हो साथै हाम्रा छोरीहरू आवर डॉटर्स 2.0 कार्यक्रमले नयाँ पुस्ताका छोरीहरूलाई आत्मविश्वासी बन्न प्रेरित गर्नुका साथै समान अवसर समावेशी सोच र सकारात्मक परिवर्तनको सन्देश फैलाउने उद्देश्य राख्दछ यस कार्यक्रम मार्फत महिला नेतृत्वको उजागर गर्दै